0: जल्दबाजी करोगी ना तो तुम्हारी एक न एक हड्डी जरूर टूट जाएगी।
1: टूटती है तो टूटने ना, डॉक्टर एक काम की, वो बांधो ना वो सफेद सफेद, वो क्या होता है
0: सफेद सफेद? अच्छा अच्छा प्लास्टर,
1: प्लास्टर हाँ हाँ,
0: प्लास्टर नहीं प्लास्टर,
1: प्लास्टर
0: अरे बी नहीं,
1: ए ए ए